तू तो चुलाओ ना लेना चला था ना होगा तो ना कोसा चुलाए ना लिंदा दीमा बन गया लगे आएंगे तू ताके दागा दा दा दा दागा दागा दा दा ना भाई मॉल डोमिंगो इन फिएटा ला हैमिल्टन फिएटा ला हैमिल्टन चार्ली क्रूस Mili Quesada, óptimo, papi. Y pues vamos a tener todo el mundo los zapatitos rotos. ¡Ay, Duty!